किस्मत में मैं अपनी चंद फसलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है, मेरे दिल में तेरी यादों का धुआं बाकी है। मेरे दिल में तेरी यादों का धुआं बाकी है, दर्द देने के लिए जख्म निहां बाकी। याद आए फुलाते फुलाते, बहुत याद आए, बहुत याद आए, बुलाते बुलाते बुलाते।